6.9 को शानदार डिस्प्ले, AI powered camera, 3 वर्ष को वारंटी सहित Redmi A7 मा 5200 mAh तथा Redmi A7 Pro मा 6000 mAh पावरफुल बैटरी को साथ थप अत्याधुनिक विशेषताहरूले तपाईको मन जित्छ बारम्बार।

सहमति हुन सकेन। सबभन्दा पहिला प्रमुख विश्व समाचार। अशोक दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। अमेरिकी विदेश मन्त्री मार्को रुबियोले

0: का कपड़ा पाइनु का साथ ही दौरा सुरुवाल कोट पैंट स्कूल कलेज का ड्रेस अफिस का ड्रेस समय में सिलाइने पसल खुली सक्यो नि त्यहाँ त एक जोर कोट पैंट सिलाउँदा शर्ट टाई र कोट कभर पनि फ्रीमा दिने रहेछ नि।
1: हो र कहाँ? अनि सम्पर्क नम्बर?
0: प्रोप्राइटर कृष्ण बहादुर नेपाली, सम्पर्क नम्बर 9765 72 69 36 98 17 48 75।